मन एक न चेतस मूड मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहा। ना हो जती सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की

शरण पर की रखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन।

कबिओ बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ दै मोह चाव हो। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हो जो सदा हमारी पच्छा, श्री अस्तु जो करिया हो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट की पट पट की जाने। जब करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब करख करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम

तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिन सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कहीं पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बाहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचम पव, आज जुगाद स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्यो बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तु तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सबटारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक में हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह शव सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें सुभारा, काल फास्ते ताहे उबारा।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुवराता, किलविक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता, श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्याप्त कोई अड़ेला, सुने गुंग जो याहे सुरस न पावई, सुने मूर्छित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पव निकट न तिन नर की रहै, हो जो या की एक बार, चौ पई को कहै, चौ पई संबत सत्रह है, सहस पणिजै, अर्ध सहस फुंतीन कहिजै, भाद्रव सुधी अष्टमी रवारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा।

सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहै हम एक न जान्यो। श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो ही बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो द्वार।

दास गोविंद दास तुहार रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तम पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया।

प्रणाम। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गलां समरथ स्वामी, सो क्यों मनहु विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे, करतां तेरे सब किश है, जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाइयां, करसान सुख मनाए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटो हो, जिस दी एह वड़ियाइया। कहे नानक सुनहो संतो हो, शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंचदूत तुद वास कीते, काल कंट कुमारिया। तुर कर्म पाया तुझिन कौ, से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख हुआ, तित

कि जीवन विच गत नानक, हे नानक जी गत है उन्हां दी, भला हो गया, मुक्ति हो गई उन्हां दी। जप एक हर नाम, जिस दिन एक अकाल पुरख दा नाम जपया उहदी बंदगी जीवन दे विच प्रतक हो गई। सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह महाराज कृपा करन गुरमुखो, क्योंकि ये गल समझ आ गई कि तेरा एक नाम तारे संसार, दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल। सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह महाराज कहणगे ये नाम दी दात है, जैसे अंधुले हथ टोहनी हर नाम हमारा। अन्ना बंदा सोटी नाल आसरे ते तुरिया जांदा है, महाराज मैं अज्ञानी हाँ, नाम रूपी डंडा, नाम रूपी टोहनी मेरे वास्ते सब तो उत्तम है। सतगुरु कृपा करे, इन्नी को हाजरी आप समूह संगतां ने प्रवान करनी। सतगुरु जी अते गुरु की संगत होइया बेअंत प्रकार दियां भुल्लां दी खिमा बख्शन योग है, बख्श लैणा जी। सतगुरु कृपा करन साडी टुट्टी गंढ लैण, आप कृपा करन, इन्नी को हाजरी आप समूह साध संगत जी ने प्रवान करनी। सतगुरु जी अते गुरु की संगत होइया बेअंत प्रकार दियां भुल्लां गलतियां दी खिमा बख्शन योग है, बख्श लैणा जी। सतगुरु जी दा कुटान कोड शुकराना, सतगुरु आप पत रखन मेहराम करन, करो कृपा सतगुरु जी, आप जी बख्शो असीस। आओ आखिरी पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करिए जी।

0: है सुख मांगे मुको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: तुद्यागे अरदास मारी जियो तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नौ न जाने। बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी ध्याईए जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध्या वै ताए सब थाई हुना जी सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुना जी सहाय। दसा पातशाहियाँ की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी। हे निमाण्या दे मान निताण्या दे तान न्योट्या दी उठ सच्चे पिता धन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी आप जी उन्हें अपार कृपा बख्शिश मैं रामत की अमृत वेले तो खुले दर्शन दीदारे बख्श के निहाल निहाल निहाल किया। इस वेले संध्या के दीवाना की समाप्ति उपरंत आप जी के पावन पवित्र स्वरूपां की टहल सेवा हुई है। नाल नाल सोहिला साहब जी की बाणी के जाप हुए समुची बाणी पढ़द्या टहल सेवा करद्या बेअंत तरह दियां भुलां गलतियां हो गई। सतगुरु जी अणजाण बच्चे जाण के मुआफ करना गांह तो समत बख्शनी। इस वेले आप जी के चरणा कमलों पास अरदास बेनती जोदड़ी आप जी कृपा करो अपने निजी स्थानों वाल जाने की कृपालता करो। संगतां नूं छुट्टियां बख्शो अमृत वेले फिर दर्शन दारे बख्श के निहाल निहाल निहाल करना। अखर वादा घाटा भुल चुक मुआफ करनी सरबदे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिता वे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनेहा

पर मैनू एक गल दसो, इस गल दे नाल मेरा की संबंध? ये गल दसो। ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्यार दे विच भिज के नेत्र बंद करके आखन लगे, बहादुर शाह ओ बुढ़ा बाबा कोई होर नहीं, वो तू ही हुई सी जो एक एक प्रसादे नू तरसदा रहिंदा सी, तू ही हुई सी। अज जन्म लैके सारी दुनिया ते राजा राज करदा है, किड्डे किड्डे नौकर चाकर तेरे अगे हाथ बन्नी खलोते ने, आ देख लै गुरु रामदास दियां रहमतां तेरे कोल अज तक नहीं मुकियां, अज तक नहीं मुकियां, पता नहीं किन्ना चिर तू खानियां ने, किन्ना होर सुख भोगना है, कौन जाने गुण तेरे चरणा ते डिग पिया, तेरी हो गया अज बहादुर शाह सतगुरु, तेरे गुणा नू कोई नहीं जान सकता, तेरिया रहमतां नू कोई नहीं जान सकता। सो सतसंगियो बख्शिश हो रही है, इसीलिए गुरसिख नू ए हुक्म है, तू पुन दान करदा रहा, तू गरीब दे मूह दे विच पांदा रहा, जिथे धन कमा के अपने बच्चियां दे मुख पांदा है ना, गरीब दे मूह विच भी पाया कर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आख रहे ने, गोलक राखे ने जो शलका करे व्यापार, कहे गोविंद सिंह लाल दी भोगे नरक हजार। जेड़ा दसवंध नहीं ना कटदा वो जीवंदे जी भी नरक भोगदा है, उहदा सारा धन हॉस्पिटलां विच कचहरियां विच मुकदमियां विच ही लग जाता है, भोगे नरक हजार, हजारा नरक जीवंदे जी भोगदा है। नहीं बई, नेक कमाई करके किसे भुखे नू भोजन छका दिया कर, किसे तन दे नंगे नू कपड़ा पहना दिया कर, किसे गरीब दे बच्चे दी पढ़ाई दी जिम्मेवारी ले लिया कर, किसे गरीब नू किताबा ही ले दिया कर, किसे गरीब दी बच्ची दी शादी ते पैसे खर्च दिया कर। गुरु घर विच धन की लोड़ है, उथे सेवा ला दिया कर। दसबंध कढ़ण दे कई तरीके ने, कई तरीके ने, पर जरूर कढ़िया कर, कोई फर्क नहीं पैंदा। महीने दे विच 30 दिन ने, ते 2 दिन की कमाई ला दिया कर गुरु लेखे, ते सतगुरु बख्शिया करेगा। बाबा नंद सिंह की बख्शिश करते सन, औखा वेला आ जावे ना ते कदी भी दसवंध नहीं रोकना चाहिदा। देखो बाबा जी दे किहो जे बचन ने, औखा वेला आ जावे कदी भी दसवंध ना रोको, फिर सौखा वेला छेती आ जांदा है, सौखा वेला छेती आ जांदा है। कौन जाने गुण तेरे, ऐ मेरे मालक तेरे गुणा नू कौन जान सकता है।

ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। तौल धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या दिन सूत। धरती होर पर होर होर तिस्ते भार तलै कमन जोर। इह लिखा लिख जाने कोई।

तेरे में ना ही कोए विण गुण कीते भक्त न होए। कवन सवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार वेल न पाई पंडती जे होवे लेख पुराण तत्वार न जोगी जाने रुतमा हुना कोई किव का राखा किव साला ही क्यों मरनी किव जाना वड्डा साहिब वड्डी ना।

0: निवारे
1: मूर्तिरानी कुरंग से कूदत पान के गान का जात निवारे
0: पारी पजान के पूप पली बेदने आपद शीस न जात बचारे
1: इत बे तो कहां पे पूप अंत को नांगे पाए पधारे
0: जीत फिरे सब देश दुसान को बाजत टोल मर्दंग नंगारे
1: गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही राज हजारे
0: भूत पवेख पुआन के पूप तो कौन गने ने जात बचारे
1: सिर्फ भगवान पजे बिन अंत का।

0: सब को सुनना एक जात जनेक एक दिवया
1: दानम देव फनेंदन साचर पूत पेख पुआन जपेंगे
0: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब ताप तपेंगे
1: उन पर तापन बार जैत तुन पापन के बह पुंज खपेंगे
0: सात समूह प्रसन्न फिरे जग सब लोक चपेंगे
1: मान में इंद्र गजिंदन रातव जून तर लोक राज करेंगे
0: तोड़ी जान जार एक दान सुंबर साज बरेंगे
1: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास बरेंगे
0: जे नर श्रीपत के प्रसन्न

0: त्रिवली सात समुंदन लोगे ऊपर लोग गवायो।
1: बास के योग ख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो।
0: सात कहूँ सुन लियो सब प्रेम कियो तिन ही प्रपायो।
1: काहू ले पाहन पूज तरयो सिर काहू ले लेंग गर लटकायो।
0: काहू लखियो रवा चित समय काहू पछा को सी।

0: कर्म पाया तू जिनको से नाम हर के लागे साची लवे बिन देन मानी देन मानी लवे बाजो क्या करे बेचारिया एस नो होता ना ए सब लाग सवारिया
1: कहे नानक लवे बाजो क्या करे बेचारिया
0: आनंद आनंद सबको के आनंद गुरु ते जानिया
2: आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया
0: कर कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया
2: अंजन का मोह टूटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया।

0: मन प्यारिया तू सदा सच माने
1: एहो कुटुंब तुझे देखदा चले नहीं तेरा नाले
0: सा तेरे चले नहीं तू नाल की
1: ऐसा कम मूले न कीचे जित अंत पछोताई है
2: सतगुरु का उपदेश होवे तेरे नाले
1: कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले।

0: जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया।
1: जियो निर्मल बारो निर्मल बारुद निर्मल जियो निर्मल सतगुते करनी कमाणी।
0: सोए पाचे नाही मनसा सच सम

0: न जाई पाया।
1: कहे नानक हर प्यारे जीव गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाए।
0: ए सचा सोहिला सचे कर गाओ,
1: गाओ ता सोहिला कर सचे जिते।

0: और न मांगत हो तुम ते कुछ चाहत हो चित में सोई की जय
1: सोवा तीरन पीतर जूझ मरो तो साच पती जय
0: संसहाय सदा जग माए
1: कृपा कर श्याम है वर की जय शिवा वर मोहे है शुभ कर्म ते कबू ना डरो
0: ना डरो और सो जब जाए लरो निश्चय करे अपनी जीत करो
1: अपने ही मन को ए लाल जाओ गण तो उचरो
0: जब आपकी औद निधान बने अति हिरन में तब जूझ मरो
1: देश तन जियो तह को तन जियो तह को जुग जग में मुक्ति हर चित में जुद विचार है
0: अनितना नित रहे जसना चढ़े पव सागर।

ज्ञान पंजन गुरुदेव बंद सहोदरा गुरुदेव सां सद बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा।

मात पिता हम बारिकते तुम्हारी कृपा में कोई न जाने तुमरा ऊँचे ते ऊँचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी तुमते हो सो तुमरी गात में त तुम ही जानी नानक दास। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमरकै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस रिठे शब्द खजाए। तेग बहादुर सिमरे है घर नौने दया वह ताए। सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यांतर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देखन डिठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बन बन कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासा नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यांतर के बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवै चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान चौंकियां।

चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के हे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितो जिक हिजय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजय

बिनासे मिल जल जल है खटाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक क्या सुनिंदो कूड वंजन पवन चुलारिया नानक सुनियर ते प्रवान जो सुनिंदे सच धनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु चरणा विच विराजमान गुरु प्यारी सतसंगत जी आप जी दे चरणा विच जो अज दी जरूरी बेनती है कि जो अज दे हुक्मनामे साहिब सतगुरु साहब जी ने बख्शिश किए हैं आप जी नूं इस दे विच एक नवा रूप दिसिया होवेगा कि इस हुक्मनामा साहिब दे विच कोई सिरलेख नहीं आया। सीधा नंबर आण के पहला हुक्मनामा साहिब संपूर्ण होते सलोक आया है, कोई सिरलेख महला पंजवा जा महला चौथा नहीं आया। फिर उस तो उपरंत सलोक तो बाद फिर शंत आया, नानक शब्द दी छाप ला के सतगुरु ने फिर संपूर्ण किया। ये चार सलोक तो चार शंत आए हैं। जदों आप जी ने हुक्मनामा साहिब लैना है पूरे शंत तो पूरे सलोक पढ़ने हैं। जिन्ना चिर तक पिछे जिमें दो डंडे फिर एक अखर फिर दो डंडे फिर एक अखर तो फिर दो डंडे आण के शब्द संपूर्ण नहीं हुंदा, उन्ना चिर तक जिमें ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन ना जाए अकथ हुक्मनामा साहिब है। ये तकरीबन दो अंगा का हुक्मनामा साहिब है। ये नाल सलोक तो शंत सारे ही पढ़ने हैं। एक होर बेनती इस संबंधी कर देव कि जदों रामकली राग दे विच हुक्मनामा साहिब आ जाए, मान लो ओंकार बाणी दे अधीन हुक्मनामा साहिब आ जाए, ओंकार बाणी दे अधीन आया होया हुक्मनामा साहिब आप जी ने जिहड़ा हुक्मनामा साहिब वाली पौड़ी है उहदे तो गांह चार पौड़ियां पाव पंज पौड़ियां दा हुक्मनामा साहिब लैणा है। जे आनंद साहिब दा पाठ आ जाए रामकली राग विच ते जिहड़े शब्द तो मान लो कि 11 नंबर पौड़ी तो हुक्मनामा साहिब शुरू होया तो 15 नंबर पौड़ी तो संपूर्ण करना है। जे इस तरह ओंकार बाणी है ओंकार बाणी तो बाद जे सिद्ध गोष्ट विचों हुक्मनामा साहिब आ जाए तो आप जी ने उस हुक्मनामा साहिब दियाँ पांच पौड़ियाँ पढ़निया जरूरी हैं। और इस करके इन्हां गल्लां दा आप जी ने खास ख्याल रखना, जिवें जिवें हुक्मनामे साहिब आउणगे उस तरीके दे नाल आप जी दे नाल बेनतियां सांझियां कीतियां जाणगियां। बेनती है कि सहज पाठ आरंभ हो चुके हैं, जिवें आप जी ने पहला उद्यम किया है इस तरह ही हुण उद्यम करके आप जी हाजरियां लवाओ और डायरी दे उपर नाल ही नोट कर दिया करो। हर शनिवार ते एतवार सवेरे 3 बजे तो लैके 4:30 बजे तक श्री सुखमनी साहिब दे जाप हुंदे हन, आप जी हाजरियां भरिया करो। आओ हुण भाई साहिब जी दे जथे पासों आपां गुरबाणी कीर्तन सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।